0: 铁棒，
1: 你阿哥 boss，
0: 哦，लगता है boss हमें toss करने वाला है।
1: अब क्या करें?
0: जो भी करेंगे, एक साथ करेंगे।

0: ¿Tu gati?
1: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है। बहुत सारे गाने आते हैं मुझे।
0: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन।
2: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया दौड़ निभाना।
0: तेरी बात

0: Nada.
1: Nice. Sweet. Sister type. थोड़ा गरम गा सकती है?
2: देख, मैं बताता हूँ।

0: तू गाती?
1: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है। बहुत सारे गाने आते हैं मुझे।
0: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन।
1: हाँ।
2: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया तोड़ निभाना।
0: तेरी बात।

0: Nada.
1: Nice. Sweet. Sister type. थोड़ा गरम गा सकती है?
2: देख, मैं बताता हूँ.